0: हमारा साथ देने के लिए जब भी आपसे बातचीत होती है तो वक्त कहाँ भाग कर चला जाता है हमें हमेशा वक्त की कमी खलती है और यही सोचते हैं कि आपसे और ज़्यादा जानकारी लें मगर हमेशा इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम में हमारे साथ फिर से शामिल होंगे हमें हमारे जो लिसनर्स के कुछ जो सवाल हैं उनका आप जवाब देंगे तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने लिसनर्स से हमेशा अलविदा मांगते हैं और उनकी बेस्ट विशेस की हमेशा कामना करते हैं आज के प्रोग्राम में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जब तक उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो हमारे लिसनर्स का है बहुत अच्छा निकले जहाँ पर रहें वो सही सलामत रहें हमारी दुआ है उनके लिए और जगजीत जी नमस्कार
1: नमस्कार